दानोदपारा योडीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुमची प सलूर सो रुपये बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमची द ऑयली स्किन और द एक्नीज दपारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा तुमची प सलूर उरजु की सासुद स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और आवाज दाना दगा दानो चुकम दागू नदी अगह मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड ट्री ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दगा प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और दानू दाहुना प मुकमल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

सिर्फ इतना, जुर्म सिर्फ इतना है हम उनको प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं। अच्छा लिसनर्स, मैं कुछ थोड़ा सा बात करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि मेरी तबीयत जो है ना आज कुछ थोड़ी सी नासाज भी है, तबीयत आज कुछ थोड़ी डल डल भी है, लीजी लीजी भी मैं मतलब जो है ना फील कर रहा हूँ। बीमारी के हवाले से यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा, करना चाहूंगा कि बीमारी इंसान को अपने आप से मिलवाने का एक खामोश लम्हा होती है। कभी कभी इंसान सारा दिन दुनिया के साथ भागता रहता है, काम, जिम्मेदारियां, मसरूफियात, लोगों की बातें, हंसी मजाक, फोन कॉल्स, और हमें लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है ना एक दिन जिस्म जरा सा थक जाता है, परेशानी पर मजीद परेशानी आ जाती है, आंखों में बोझ उतर आता है और इसके साथ साथ आवाज में थकन आ जाती है, बदन कहता है जरा ठहर जाओ, और इंसान कहता है या इंसान जो है ना अचानक महसूस करता है कि हम वाकई इतने मजबूत नहीं जितना खुद को जो है ना समझते हैं। बीमारी कभी कभी जो है इंसान को रोकने के लिए नहीं आती, शायद जो है ना ये याद दिलवाने के लिए आती है कि ए इंसान तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम्हें भी कभी किसी के हाथ की ठंडक, किसी की आवाज की नरमी और किसी के एक छोटे से जुमले अपना ख्याल रखना इसकी जरूरत होती है। और बीमारी के हवाले से यहाँ ये बात भी मैं करना चाहूंगा लिसनर्स कि बीमारी अजीब चीज है, सेहतमंद हूँ तो हमें अपनी सेहत की कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही जिस्म जरा सा जो है ना कमजोर होता है, एक गिलास पानी भी नेमत लगता है, बिस्तर भी आरामगाह बन जाता है, खामोशी भी अच्छी लगती है, और किसी अपने की आवाज वो तो जैसे जो है ना एक मेडिसिन बन जाती है। आम दिनों में जिस कैसे हो का जवाब जो है ना हम सिर्फ ठीक हूँ मैं कह देते हैं ना, बीमारी में वही सवाल दिल के अंदर जो है ना कहीं गहरा हो जाता है, गहराई तक उतर जाता है, शायद इसलिए कि बीमारी हमें जो है ना जिस्मानी कमजोरी के साथ साथ जज्बाती हकीकत भी एक तरीके से दिखाती है, जो एक जज्बाती हकीकत होती है ना इस हवाले से बताती है। और यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि इंसान सिर्फ मेडिसिन इंसान को नहीं चाहिए होती, कभी कभी जो है ना उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत भी होती है जो उसके पास बैठकर कुछ ना कहे, बस मौजूद रहे। और यहाँ बीमारी के हवाले से यहाँ ताहिर ये बात भी कहना चाहेगा कि बीमारी भी होती है जी, जब रात कुछ ज्यादा खामोश हो, आंखों पर नींद का बोझ हो, आवाज थोड़ी भारी हो, मौसम इंसान कंबल में किसी एक चेहरे को याद कर रहा हो तो दिल कहता है काश वो इस वक्त जो है ना पास होता, कुछ नहीं कहता, बस इतना पूछता कि अब तबीयत कैसी है।

फिर शायद मारी भूल कर आवाज को सुनता रहे। कभी कभी जो है ना मेडिसिन से ज्यादा किसी अपने की फिक्र इंसान को सुकून दे देती है। कोई दूर बैठकर जो है ना कह दे कि मेडिसिन ली, तो सिर्फ जो है ना दवाई का होता है, मगर जो है ना दिल उसे जो है ना मोहब्बत में समझ लेता है, मोहब्बत समझकर खुश हो जाता है। और यहाँ ये बात भी ताहिर कहना चाहिए कि लिसंस के शायद इसीलिए बीमारी इंसान को रिश्तों की असल कीमत भी समझाती है। जब हम सेहतमंद होते हैं तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोगों के पैगामात नज़रअंदाज कर देते हैं, कॉल बाद में करने का सोचते हैं, किसी के पूछने पर जल्दी से बिल्कुल ठीक कह देते हैं, बिल्कुल ठीक कहकर मतलब जो है ना बात को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो तो मालूम होता है कि कौन वाकई जो है ना फिक्र करता है, कौन पूछता है और कौन नहीं पूछता। इंसान जवाब का इंतज़ार भी करता है, कौन सिर्फ जो है ना ख्याल रखना नहीं कहता बल्कि जो है ना दोबारा पूछता है अब बेहतर हो, अब तबीयत कैसी है, अब बेहतर है या नहीं है। सो खैर जनाब, ये तो मैंने मतलब अपने हवाले से यहाँ पे बात कर दी, बीमार हूँ ना क्योंकि अच्छा जी, साथ साथ पैगाम भी आपके आ रहे हैं, इनको भी साथ साथ एंटरटेन करते हैं, शामिल करते हैं। खैर आज का मेरा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक मेरा मैंने मतलब प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर दी है, ऑन एयर कर दी है, आप लोगों को मैंने बता दी है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, किस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनाब, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें पीछे छोड़ना क्यों जरूरी होती हैं, ठीक है ना। इस मौजू पर बात कर रहे हैं, इस पे आप जरूर आइएगा अपनी राय अपनी आरा मेरे साथ यानी कि ताहिर जमान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।

अच्छा लिसनर्स, मैं कुछ थोड़ी सी यहाँ ये बात भी करना चाहूंगा कि कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम जल्दी में नहीं बल्कि जो है ना बहुत मोहब्बत, सोच और दुआ के साथ मुकम्मल करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बात बताई कि आयजा नूर की छोटी बहन जिसका नाम मैंने कल आप लोगों के लिए ऑन एयर किया था, अच्छा मैं यहाँ ये बात कर देना चाहता हूँ कि कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम जल्दी में नहीं बल्कि मोहब्बत, सोच और दुआ के साथ मुकम्मल करना चाहते हैं। और बच्चों के नाम का फैसला भी जाना शायद इन्हीं खूबसूरत फैसलों में से एक है। जब घर में एक नन्ही सी जान आती है तो सिर्फ जाना एक बच्ची पैदा नहीं होती बल्कि एक नई खुशी, एक नई दुआ, एक नया ख्वाब, एक पूरी कहानी, एक पूरी नई कहानी जन्म लेती है। फिर वालिदैन चाहते हैं कि इस नन्ही सी जिंदगी को ऐसा नाम दिया जाए जो सिर्फ खूबसूरत सुनाई ना दे बल्कि जब भी पुकारा जाए तो दिल में मोहब्बत उतर आए, जिसका मतलब खूबसूरत हो, जिसमें दुआ भी हो, बरकत भी हो और आने वाली पूरी जिंदगी के लिए एक खूबसूरत एहसास भी छुपा हो। गुज़श्ता रोज हमने अपनी नन्नी बेटी के लिए अरिबा नूर नाम मतलब है ना अनाउंस किया था, अरिबा नूर के नाम का जिक्र किया था, जिक्र और ऐलान किया था। ये नाम हमें बेहद है ना खूबसूरत लगा। इसी मोहब्बत और खुशी के साथ हमने आपसे या आपके साथ ये नाम शेयर किया, अनाउंसमेंट की। लेकिन चूंकि जो है ना इस वक्त ये नाम हतमी तौर पर फाइनल नहीं हुआ था इसलिए घर में दोबारा गौर फिक्र शुरू हुई है। कभी कभी जो है ना ऐसा भी होता है कि एक नाम जबान पर बहुत अच्छा लगता है मगर जब वालदैन उसे अपनी बेटी के

साथ जोड़कर बार बार सोचते हैं, उसकी मानी देखते हैं, बहन भाइयों के नामों के साथ जाना मिलाकर देखते हैं, खानदान के ऐसे साथ को सामने रखते हैं, तो दिल कहते हैं कि शायद जाना एक और नाम भी सोच लेना चाहिए। तो यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, और नाम बदलने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पहला नाम मतलब बुरा है, पहले जो नाम मैंने अरिबा नूर ऑनर किया है ये बुरा है, बल्कि यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, अरिबा नूर एक खूबसूरत नाम है और हमें आज भी पसंद है, बस दिल ने कहा कि जब फैसला एक पूरी जिंदगी के लिए होना है तो मतलब जाना तो क्यों ना इसे थोड़ा सा और वक्त दे दिया जाए, क्योंकि एक चीज यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा, क्यों ना एक बार फिर सोच लिया जाए, क्यों ना ऐसा नाम तलाश किया जाए जिससे कल हमारी बेटी खुद है ना अपने नाम के तौर पर फख्र और खुशी के साथ कबूल करे। आखिर नाम सिर्फ है ना चंद हरूफ का मजमुआ तो नहीं है ना, नाम वो लफ्ज है जिसे माँ अपने बच्चे को मतलब मोहब्बत से पुकारती है, बाप दुआ के साथ बोलता है, घर वाले बार बार दोहराते हैं और बच्चा अपनी पूरी जिंदगी या अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के सामने जो है ना उसी नाम से पहचाना जाता है। और यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स कि हमारी पहली बेटी का नाम आयजन हूर, और जब दूसरी नन्नी परी हमारी जिंदगी में आई तो दिल की ख्वाहिश है कि उसका नाम भी ऐसा हो जो आयजन हूर के साथ खूबसूरत लगे, दोनों बहनों के नाम एक दूसरे के साथ मोहब्बत की तरह जो है ना जुड़े महसूस हों, मगर दोनों की अपनी अलग पहचान हो, अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो। यही वजह है कि हमने सोचा है कि अरिबा नूर को फिलहाल जो है ना आरजी नाम समझा जाए, हतमी नाम रखने से पहले जो है ना मजीद गौर किया जाए, और शायद वालदेन के लिए ये बिल्कुल फितरती बात है, कभी कभी बच्चे के नाम का फैसला एक ही दिन में नहीं होता, एक नाम आज दिल को पसंद आता है कल कोई दूसरा नाम अपने मानी की वजह से जो है ना मतलब पसंद आने लगता है। और यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, कभी जो है ना कुरान और सुन्नत से नस्बत देखी जाती है, कभी नाम का मानी जो है ना देखा जाता है, कभी तलफ्फुज़, कभी खानदान के नामों के साथ जो है ना मुनासिबत, कभी ये सोचा जाता है कि बच्ची जब बड़ी होगी तो क्या उसे जो है ना अपना ये नाम पसंद आएगा या नहीं आएगा, और कभी सिर्फ जो है ना दिल की एक कैफियत होती है, एक नाम सुनते ही दिल कहता है कि हाँ यही नाम है। हमने ये भी महसूस किया है कि क्या कभी कभी इंसान किसी फैसले को देखें, हमने ये भी महसूस किया कि कभी कभी इंसान किसी फैसले को बदलता नहीं बल्कि जो है ना उसे मजीद खूबसूरत बनाता है। नाम के बारे में दोबारा सोचना भी जो है ना इसी तरह है, और इसलिए अगर कल हमने अरिबा नूर का नाम आपके साथ शेयर किया था और आज दोबारा नाम पर गौर करने का फैसला किया है तो इसे किसी गलती या परेशानी के तौर पर ना लीजिएगा, ये बस जो है ना एक वालदैन की मोहब्बत है जो अपनी नन्ही सी बेटी के लिए बेहतरीन नाम तलाश करना चाहते हैं। और यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूँगा लिसनर्स के, और सच तो ये कि जब घर में एक नन्ही सी जान हो तो उसके नाम पर भी दिल जरा जो है ना ज्यादा हसास हो जाता है, इंसान चाहता है कि जब उसे जो है ना पुकारे तो आवाज में मोहब्बत महसूस हो, जब नाम लिखे तो दिल खुश हो, जब उसकी तस्वीर के नीचे नाम लिखा जाए तो वाकई ये नाम उसी के लिए बना हो। शायद इसलिए हमने जल्दी में हतमी फैसला करने के बजाय एक बार फिर सोचने का फैसला किया है, तो कल का अरिबा नूर वाला ऐलान मोहब्बत के साथ अपनी जगह मौजूद है, मगर जो है ना इसे अभी हतमी नाम ना समझा जाए। हम अपनी नन्ही परी के लिए एक ऐसा नाम चाहते हैं जो आयजा नूर के साथ खूबसूरती भी दे, मतलब जो है ना खूबसूरत एक जोड़ी भी बनाए, इस्लामी नाम भी हो, बामानी भी हो और जदीद भी महसूस हो, बोलने में आसान भी हो, और सबसे बढ़कर जब माँ या बाप उसे मोहब्बत से पुकारें तो दिल से यही आवाज निकले, हाँ यही हमारी बेटी का नाम है। सो जनाब, हतमी नाम मतलब जो फाइनल नाम होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा।
आपने मुझे अपने होने का एहसास जरूर दिलवाना है, मुझे बताना है कि आप मेरे संग संग हैं, मेरे साथ साथ हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जी, कॉल्स कर सकते हैं 09382804595, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और आप अपनी राय अपनी आरा मुझे दे सकते हैं 09382804595। अगेन से मैं कांटेक्ट नंबर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ 09382804595। एंड ट्रैक इस तरह करते हैं कि आपके लिए एक पश्तो का ट्रैक क्यों कर लेते हैं, लेकिन पश्तो शामिल करने से पहले ये कि एक उर्दू का ट्रैक सुन लीजिएगा।

आवाज ओके दे कना एफएम 94 के समा आवाज हो रही मालूमात राखी रेडियो तलार समा आवाज ओके दे कना भाई आवाज ओके शुभ सभा सवाबी वाले मेहरबानी आवाज खरीद देता सु

0: Ma anche chi?
1: Kempi, de giurunu pe marendo para Kempi.
0: Da, giurunu pe marendo para Kempi, nerdici, de la cosa de respaldo de Iraju, pe cerca de la puta acorde, nici Allah la para sehat varghi.
1: De khair, Suleiman, stați sub telefon, că vă urmărește rămânând la time, să mă asară short, înșelă, vei băcăbări cu Zumanga. د سوابی د هسپتال هیلپ لائن نمبر کوم دی صدا سده 0331394494 بلال جان دلوی الله پمان
2: د کمرشل بریک زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकजे शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
3: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो कुचर त दग ज्वानको पवख बाने गम उनकल लेशी न प रारवान वक की दग ज्वान के स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रीडियंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमचे द ऑयली स्किन और द एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नी पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और यवाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अगहम प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे

मास्टर हेदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा तुमची प सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्मई और ये वाज दा न द दग दानो चुकम दागु न दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सैलिसिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पू की दनन दनन स्तासु दानी और द दानु दागुना प मुकमल तो गबानी खत्मई नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सूरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

0: Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो समझा जाता है इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचर त दग जवानको पवख बाने गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द

0: भाई क्या सुनगे मी है यार बिल्कुल ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। आगे जनाब टाइम टाइम टाइम रसरहत दाखिरा ने कादर भवालम से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी सो को चरते ना
1: अस्सलाम
0: बहन सर साहब आवाज मुक्त क्लियर ना राजी। आगे जनाब जमागरानो खगूद रनो के दरमंदो रिदन को ملاقات کی جدون لے اجازت دلو اللہ پامار۔

दोस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल।

0: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ भी शामिल हो। वही यकीन, वही उम्मीद, आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राबता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, हु कुचरता द दग जवानको प वख बानी गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग जवानके स्तासु द खाइस द खराबेदो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम। तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश। तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा। तुम चिप सलूर रोज की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाजिदा ना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल आओ क्लिंडामाइसिन कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदीक कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।